0: बस एक औरत है हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस यह कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहलां तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निघी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया ता तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो, सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां, ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनूं नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानूं कदे डर लगे भी, उदों समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनूं लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: बाबा जी, बाबा जी, दुरानी हमलावरां ने सब तो पहला इस धरती दियां औरतां नूं लुट्टिया, बेपत्ती कीती अते उन्हां नूं गुलाम बना लिया। हुण उन्हां मनुखता दे निर्दयी दुश्मनां ने दरबार साहब उत्ते भी कब्जा कर लिया है। ओ पावन सरोवर नूं पतित करन लई सब कुछ कर रहे हन। ओ अंदर तंबाकू भी पी रहे हन ते ओ
1: बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हुण इह सब सानू खत्म करना ही पवेगा।
0: पर असी की कर सकते हां, साडे विच तां कोई योद्धा भी नहीं है ते ओ हमलावर हजारां विच हन।
1: मैं अज ही इस लड़ाई दी अगवाई करांगा।
0: बाबा जी, मैं जानता हां कि तुसी पहला बहुत लड़ाइयां लड़ियां हन, पर मेरे मन विच शंका है। मेरा तुहाडा कोई निरादर करन दा इरादा नहीं है, बस मैं जानना चाहुंदा हां कि तुसी 75 सालां दे हो अते तुहानू कदे युद्ध दा अभ्यास करदे भी नहीं वेख्या, तुसी लड़ाई दी किवें अगवाई करोगे बाबा जी?
1: एक अजिहा दी सख्त लोहा है जो हर तातू तो सख्त है, ते ओह है गुरबाणी। मैं गुरबाणी दे उस लोहे दा अभ्यास कदे भी नहीं छड्या। इस दी ताकत मेरे शरीर दे रोम रोम विच है।
2: फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे महान पुत्र बाबा दीप सिंह जी ने अपना खंडा चुकिया ते चल पए गलियां वल।
1: आओ सिंगो, आपा पाईए चले श्री अमृतसर वल।
2: कुछ बहादुर योद्धे उन्हां दे नाल जुड़े अते जीवें जीवें ओह अगे वधदे गए, होर योद्धे भी नाल जुड़दे गए। फिर बाबा जी ने उन्हां सिंगां नूं कहा,
1: तुसी गुरु दे पुत्तर हो ते तुहाडे अंदर एक शेर सुत्ता पिया है। उस सुते शेर नूं जगाउण दा वेला आ गया है।
3: पर दुश्मन तो बहुत ज्यादा ने, ते ये सब असंभव
1: है। कुछ भी संभव नहीं है, संभव नहीं है।
2: फिर उन्होंने अपने खंडे नाल जमीन उत्ते एक लकीर खिंची अते कहा,
1: श्री गुरु रामदास जी की कृपा दे नाल, श्री कृपा दे नाल, मैं उस समय तक डा आराम करांगा, आराम करांगा, न चुकांगा, न चुकांगा, जब तक मेरा सिर, श्री हरमंदर साहब ते न चुक जावे, श्री हरमंदर साहब ते न चुक जावे।
2: सिखां विच जोश आया अते उन्हां दे शब्दां ने आसमान नूं हिला दिता।
1: अज एक मौका है, अज मैं भी शहीदां दे नाल जुड़ जावांगा। जे तुहाडी भी चाह इस सेवा नूं पाउण दी है, आओ असी इस असंभव कारज विच डटिए। जे तुसी मौत दे डर नूं खत्म करके जूझना चाहुंदे हो, आओ इस लकीर दे विच कदम रखो।
0: हुण समा आ गया है, सानू डट के इस जुलम दा मुकाबला करना चाहिए।
2: हर योद्धा तुरंत लकीर पार करके बाबा दीप सिंह जी दे नाल जुड़ गया। उन्होंने अपने हथियार, तलवारां, तीर कमान, बंदूकां, ढालां, किरपानां चुकियां ते आपो अपने कवच पहने अते श्री अमृतसर साहब वल चाले पा दिते। फिर उन्हां विच कुछ सिंघां ने हजारां दी गिणती विच मौजूद दुश्मन फौजां दे नाल जा पिड़े ते ओह बहुत साहस नाल लड़े। दोवें पासियां दे लड़ाके मर रहे सन, पर ओह लड़दे रहे अते श्री अमृतसर साहब वल वधदे रहे। बाबा दीप सिंह जी सब तो शक्तिशाली योद्धा सन। उन्हां दे वड्डे खंडे दे वारां नाल कई हमलावर मारे गए अते कई जख्मी भी होए। फिर अचानक दुश्मन फौज दा जरनैल खुद बाबा दीप सिंह जी दे सामने आ गया।
4: तुसी चंगी लड़ाई लड़दे हो, ते इस गल विच कोई शक नहीं कि तुसी चंगे योद्धा भी हो, पर जे तुसी सोचते हो कि तुसी साडा खात्मा कर सकते हो, ता ए तुहाडा वहम।
1: तुहाडी ताकत एक झूठ है, ए टिकण वाली नहीं,
2: अते इस तरह ओह दोनों आपस विच युद्ध करन लगे। सब उन्हां नूं देख के हैरान हो रहे सन अते डर दा माहौल पैदा हो गया। बाबा दीप सिंह जी ने अपने खंडे दे एक वड्डे वार नाल दुश्मन ते जान लेवा वार पर उसे समय उस जरनैल ने भी बाबा दीप सिंह जी का शीश पूरी तरह कट दिता। वो दोवें जमीन ते डिग पे, समा रुक गया। फिर एक सिंह बाबा दीप सिंह जी दे शरीर को आके नतमस्तक होंदा है।
0: बाबा जी, असी अपनियां जानां तुहाडे वचनां उत्ते कुर्बान कीतियां हन, पर तुसी वादा कीता सी कि तुसी उस समय तक रुकोगे नहीं, आराम नहीं करोगे जद तक तुहाडा शीश श्री हरिमंदर साहब उत्ते ना चुक जावे, पर तुसी तां उत्ते पहुंचे ही नहीं। तुसी साड़ी उम्मीद ते अपना वचन कीवें तोड़ सकते हो बाबा जी?
2: हालांकि बाबा जी का सिर कट्टिया गया सी, पर बाबा दीप सिंह जी ने शब्द सुने अते उठ खड़े हुए, अपना सिर चुकिया, एक हाथ नाल उसनू अपनी गर्दन उत्ते रखिया अते दूजे हाथ नाल अपना खंडा चुकिया।
0: गुरु ते सिंह दा वादा अजे भी पूरा होवेगा। गुरु महान है, गुरु दे शब्द महान हन, अते उस दे प्यारे महान हन।
1: गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं कार्यं निर्णामे अकामे।
2: बाबा जी फिर तो युद्ध करन लगे, बहुत सारे दुश्मनां नू मारदे होए श्री अमृतसर साहब वल वधदे रहे।
1: गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं कार्यं निर्णामे अकामे।
2: जदों हमलावरां ने देखिया कि एक सिर लत्था योदा अपना कट्टिया सिर चुक के फिर तो लड़ाई करन लग पिया है, तो बहुत डर गए अते जान बचा के सारे भज्जन लगे। वो इंसाना नाल ता लड़ना जानते सन, पर की वो इंसान सी? वो एक अनोखा योदा सी जिसनू मारिया नहीं सी जा सकता। लड़दे लड़दे जदो बाबा दीप सिंह जी श्री हरिमंदर साहब के नेड़े पहुंचे तो रुक गए। उन्होंने अपने शीश नू अपनी पूरी ताकत नाल आसमान विच सुट दिता अते उन्हां दा शीश कई मील दूर तक उड़दा रहा। अखीर विच बाबा दीप सिंह जी दा शीश दरबार साहब दी परिक्रमा करके श्री गुरु रामदास जी दे चरणा विच आके लीन हो गया। बाबा दीप सिंह जी संतुष्ट हो गए। बाबा दीप सिंह जी दा वचन गुरु दी कृपा नाल पूर्ण हो गया। उन्होंने गुरबाणी दी शक्ति नाल जीवन बिताया अते अपने गुरु दी सेवा कीती। उसकी आत्मा तुरंत परमात्मा विच इस तरह लीन हो गई जिवें छोटी जिही जल दी बूंद वड्डे समुंदर विच इकमिक हो जांदी है। दुनिया भर के हजारां लोगों ने इस तरह दीयां कहानियां तो लाभ लिया है। सिख नट द्वारा किए जा रहे उपराले विच सेवा लई इस लिंक ते क्लिक करो अते होर कहानियां लई अपना दान दिओ।
5: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
6: Amardas Bala. Amardas Bala was born to well-respected parents who were very religious and dedicated people. From a young age, he learnt scriptures like the Ramayana and the Mahabharata and became very devoted to spirituality. As a young man, he worked hard to help his family.
7: Father, I will help sell goods in town and work in the field so we can provide for our family.
8: Amardas, my son, you work so hard. I'm proud of you. You will be a good family man one day.
6: Amardas later got married and had two sons and two daughters. He lived the life of a dutiful and simple householder who ran a goods shop. Even though he made enough money for his family, he gave a lot of it away to saints and needy people. Every 11 days, Amardas Ji would go on a fast and not eat any food that day. He was very devoted to the Vaishnava path. He traveled all the time to visit holy places. At the age of 41, he started a yearly pilgrimage to Haridwar. He had so much religious determination, He would walk on foot for hundreds of miles to this pilgrim site. He did this every year for 21 long years. One year, Amar Das Bala was on his pilgrimage to Haridwar. He was 62 years old. Other pilgrims noticed that even though he looked old, he still had such a vigorous spirit.
7: That old man, he's such an inspiration.
8: I've seen him go to all the lectures by all the different priests.
7: He holds harsh disciplines like us yogis.
9: Like, I've seen him, he meditates like a sadhu. It does like meditations.
10: I've seen him sitting at the feet of every holy man here and listening intently.
9: He's a holy man, you know.
10: Have you seen how he's kind to everyone he meets?
8: Wow, he does everything.
7: Even at his age.
8: I don't know how he does that. How does he do it? I mean, God, he's so great.
7: He's a great man.
8: Wow.
6: A saintly yogi noticed his sincerity and his thirst for spirituality and began talking with him.
7: Oh, Babaji, namaste. What is your name?
11: My name is Amar Das Bala.
7: Amar Das is a very good name. You truly are a servant of God. It is a true blessing to meet you. What else is the worth of life other than to meet a friendly saint like you?
6: They became very good friends and eagerly talked about many spiritual subjects.
7: Oh, God.
6: They cooked and served food to each other. This is something the yogi didn't do with anyone else, but he loved Amar Das Ji as a very special friend.
11: Oh, friend, with the blessing of God, why don't you join me on my trip home? You are already going that way. My wife and I can host you. We will feed you lovely food and give you a place to sleep.
7: Thank you, Shri Amar Das Ji. Yes, I will join you. It is all the blessing of Bhagavan, of God.
6: On the way, they spent the night at a pundit's house. The pundit knew astrology. When Amar Das Ji was resting, the pundit noticed the lines on his feet and hands. He said,
12: Oh, what is this? Look at these lines. The lines in his hands and his feet are very auspicious. This man is special. Very special indeed. You may think he is just a shopkeeper, but no. He's destined to be a king. Yes, a king. Or a great saint. No, a supreme saint.
6: Everyone was very impressed when he said this.
12: Servant, bring this great man some fruit.
6: This woke up Amar Das, who smiled at the pundit and gave him an offering for his prediction.
11: With great respect for your knowledge, please take this for your kind words.
12: I will accept this offering when my prediction comes true.
6: Later, Amar Das Ji brought the yogi to his house. He and his virtuous wife enjoyed their guest with humility and kindness. The yogi continued to admire the devotional spirit of his dear friend Amar Das Bala. One day he asked,
7: My beloved friend, you are so very blessed. Even the stars smile on you, and destiny is your friend. You are disciplined and wise and a devoted man. You must have an excellent guru who can train such a beautiful devotee like you. Who is the guru that can give such a blessing? What is your guru's name? My soul would be blessed to meet him.
6: Amar Das Ji paused.
11: Well,
7: it's okay, my sweet friend. You can tell me.
11: I've met a lot of holy men, but I haven't found anyone who is...
7: What?
11: I don't have a guru yet.
7: What? You are Be Guru? You don't have a guru? You don't have a teacher? You are a directionless waste of spiritual energy? I never share food with common people, and I shared food with someone like you?
11: Friend, sit down.
7: I am defiled! I will again go to holy Haridwar to cleanse myself of this terrible mistake that I've made. How did I get so close to someone like this?
6: The yogi was so angry, he left without even picking up his stuff, and he never came back. What the yogi said left a deep impression on Amar Das. He already knew something was missing, and after all his practices and devotions, he wasn't totally satisfied. But was he really a man with no direction? Had all of his devotions been a waste? What could he do?
11: I must find a guru.
6: He now dedicated himself to finding a guru. Though he did all of his other duties, now all he cared about was finding his guru. He searched and met many holy people, but he couldn't accept any of them. He felt incomplete, and rituals didn't bring satisfaction anymore. It was very troubling. One night in the early morning, he couldn't sleep.
11: How can a lotus bloom without the sun? How can I be liberated without a guru?
6: Then, he heard a beautiful voice. It was his niece. It was so beautiful. He followed her voice until he could hear better.
11: These are the true teachings.
6: It was simple and beautiful wisdom. It was enchanting. He listened and went into a meditative state of bliss.

0: बस एक औरत है हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि ओ कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा कजरी धरांगी।
5: शाबाश, पर जे तुहानू कदे डर लगे भी उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओ केड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समय ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: बस एक औरत है। हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगता है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकती।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया, ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो, सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਲੁਕਿਓ ਨਾ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ।
3: ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ੀ ਦਰਾਂਗੀ।
5: ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਦਾ।
3: ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ?
5: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ।
1: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।